0: zani som ni pani te chu tam ber le ado tu ni bok kum sai som ni pathum ni li da ta tang alan danin ni kum sai som ni panga ni ruk seng khan mizoram a foreigner rong jin te jing a hian Myanmar USA Australia UK Japan le Israel mi te an tam zual ani zani yorin sana ka zani news ai zo
1: chanchen thare kas pani ai zol tanga pon ani a voin chun da ni le chan ve chanchen thare pon ani ang Prime Minister Narendra Modi and Imran Khan Hyderabad tangin masona na cheng vebel je sangko le jali hu hong hem project state chung masona rural ti changtuna tur na te ni a thu chain pomri chuan West Asia boina awanga khovel puma energy lama harsna thlengme ka India chon thatakin ro mana kalpui ti a mi puita chu tuel thele gas te ren chem taka mang turin cha a rampona tanga laklu petrol ka inoi te ren taka mang turin angen ani
2: एनर्जी सिक्योरिटी का क्या महत्व है ये आज दुनिया का हर व्यक्ति महसूस कर रहा है इसलिए भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर हमारी केंद्र सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है मलकापुर में इंडियन ऑयल के नए टर्मिनल का उद्घाटन इसी दिशा में एक बड़ा कदम है बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच गया है सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है पेट्रोल डीजल गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें
1: प्राइम मिनिस्टर इन मसोना रुरेल हंजिंग अहेन चेंग फेबल चेसांग जसरी सेना पीएम मित्रा पाक वरंगल बाका नेशनल हाईवे zasam pasrina gude buler le mahabod nagar inkar tu te atel ani india le trinidad and tobago chon indemna chiriat nimin khan an jeka heng thodun tur indemna te hi tourism healthcare masona rural le ayurveda lamten ni a external affairs minister dr jason karani ni chama caribbean ramatlo chungin heng indemna te ji ani a External Affairs Ministry to Swadanin, Trinidad and Tobago Ministry of Foreign and Caricom Affairs Building a Solar Dana Tour Tendam Nahina Tela Nelson Island of Masona Rural Tizanglun Tela University of West Indies Indian Chair on Ayurveda Din Tepo Atel Ani Tansin Tarsir Titov Nana Tang Pui Chief Minister Pulal Du Oman Held ATM Kaltanga Olsam Taka Nadna Mutsu Ani Chulo Mamati Tusoin Mipuiten Tankai Takan Mange Besei Tesoi Sarkar lai pui Ministry of Panchayati Raj in Din Dayal Upadhyay Panchayat Satat Vikas sangni somni pangat noya loman dong tu te apuana Kortha North Village Council chu Clean and Green Panchayat dong huanga pakhatna ani Prime Minister Narendra Modi chu Nimin Khan Hyderabad a mason na cheng webel se sangko jali hu hong India Trinidad and Tobago chu an indemna chiriat Nimin Khan an zia chu ti zong chu chanchin thar kan pon thei chu ani

नमस्ते श्रोताओं, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अब आपको बेहतर सेवा प्रदान करने के हमारे प्रयास में हमारे साथ जुड़े रेज रेडियो ऑडियंस इंटरैक्टिव सर्वेक्षण और मूल्यांकन हमारे विशिष्ट मोबाइल ऐप के साथ मानद संरक्षक बने, जहां आप उद्घोषकों को रेटिंग दे सकते हैं, कार्यक्रमों की समीक्षा कर सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया साझा कर सकते हैं। बस हमारे आधिकारिक फेसबुक पेज पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पंजीकरण करें। आपकी सक्रिय प्रतिक्रिया हमें आकाशवाणी की विरासत को बेहतर बनाने और बनाए रखने में मदद करेगी। तो सिर्फ सुने नहीं, रेज मोबाइल ऐप के साथ बदलाव का नेतृत्व करें।

हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी प्यारे दोस्तों को. और आप सभी मेरे साथ सुन रहे हैं आकाशवाणी आइजोल FM ZOY 100.7 और हिंदी के खंड पे आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ दिल से, प्यारे दोस्तों. और हिंदी के खंड पे आपको हिंदी के गीत सुनाने के लिए और आपके प्यारे प्यारे भेजे गए संदेश को पढ़ने के लिए मैं हाजिर हूँ आप सभी के लिए फिर एक बार. यस, आप सभी की दोस्त आरजे वीएली. और दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? कल रात की नींद आप सभी की कैसी गई? कल आप सभी ने कैसे दिन बिताया? यस, और आप सभी कैसे हैं? आपकी तबीयत कैसी है? आप सभी अपने काम में जाने के लिए आप रेडी हो रहे हैं या नहीं? घर पर आप बैठेंगे रहेंगे या नहीं? और किसी सफ़र के लिए जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? ये सब बातें हमें अपने संदेश के ज़रिए बताइएगा. हमें आपका इंतज़ार रहेगा दोस्तों, ठीक है? यस. और आज हमारे साथ फिर एक बार आरजे वीएली के साथ स्पेशली प्यार भरी बातें हम करेंगे दोबारा. और आप सभी प्यारे दोस्तों का मुझे इंतज़ार रहेगा दोस्तों. और मुझे उम्मीद है कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और अपने

अपने कामों में जाने के लिए आप रेडी हो रहे होंगे. यस, तो हमारे दोस्त जामा जामा चु ठेंग दे तो दोन सा ओ दा रुक ले चन बे वेला चंग ठेंग दे तो अति चीन खानिया. अ थोक चो तोंग चु मो जामा चु. ओ तो चलिए, इस तरह आप सभी का हम आज के दिन को खुशियाँ और बहुत ही आनंद से भरने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन आपको हमारा साथ देना है दोस्तों, ठीक है. यस, मैं मुझे आप सभी की याद आ रही है और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे इस तरह दोबारा आप सभी से यहाँ इस तरह FM से 100.7 से बातें करने का मौका मिला, आप सभी को गीत सुनाने का मौका मिला. तो आइए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरे साथ अच्छा लगेगा, हिंदी के गीत को आप जरूर पसंद करेंगे. तो चलिए, फिलहाल इस खंड का सबसे पहला गीत मैं सुनाना चाहूंगी, शाहिद अली के आवाज में गाया गीत कहीं तो. यस, कहीं तो मेरी तरफ से आप सभी के नाम.

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को हमारे आज के हिंदी के सबसे पहले खंड का सबसे पहला गीत कहीं तो यस शाहिद अली की आवाज में गाया गीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। यस, मैं भी कभी कभी सोचती हूँ कि जिंदगी में हमारे लिए, मेरे लिए

दोस्त, उम्मीद है आप सभी को दो दिलों में बहुत ही खूबसूरत गीत, यस, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में गाया गीत आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों, यस, अब हम अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं। अगला गीत मैं सुनाना सुनाना चाहूंगी तुमको, सिर्फ तुमको, यस, और कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में गाया गीत है दोस्तों। लेकिन इस गीत से पहले मैं यहाँ पर आपके संदेश को पढ़ना चाहूंगी। यहाँ पर फिटनेस बॉय की तरफ से संदेश आया है। फिटनेस बॉय लिखते हैं, बॉस जेमसी निले नुआमले थ्री इडियट्स गिव मी सम सनशाइन कसन शिपारी ता ल्याव ल्याव रोंदिया अले कंतुम दोनिया इरोन लंखा जान के ब्ले लवांग pa eng a hian RJVL vo ina thin lung him dam taka i hun te mang thei tur che in lu sakna ka hlan na che a galan che a him na zong him na zong in khovel tuk ver a da tum kher su lalpa pathian a imamo zong zong akim vekti hi lo ngai tua non fau che nang che ron tiani adik le mai ka du lut tuk pa eng adikalom him na zong zong Oh, limna zongin, oh, limna zongin, kove duk vera, da tum kersu, katum lao, katum ngai lao bok kezu. Oh, milong ai la tu te khan in lao tu mani zwan, mo pa e nga soyang khan, lao tum su, oh, om ziao m lao. Lalpa patiana, ima mo zong zong akim vekti, hi, lao ngai tua non fau chin ang zhe. Mo longai to non fo chin ro o pathiana lalpa pathiana hian kan engkim kan ma mo hi om vekani chuwai engma

हिलों आई लो तो डराओ जुबानें हमेशा खुश रहिए मेरी तरह स्माइल कीजिए हंसिए मुस्कुराइए ठीक है और प्यार भरे बातें हम इस एफएम जो ऑय के जरिए करते रहेंगे और पर परिपोहिया नर जबियल कलोलुत ले लोग अंगे छोरा रुआल हन्नी तो मैं उत्सवान छोरा रुआल हन्नी तो मैं उत्सवान जिंग ही कंठाओं दम चबक तो लो तू ले ला आ कं मिरिल तंगवाल भी कुंते ही लेर कटिवे लो अजय इन अलग वेशिम शिमनी दिखते अजय बॉक्सिया ओ लेर हन सोईता का ही चुआन जिलजाम ही अलेर दो बेरिन कशिया में मोई देनियन हियान ओ सोई इसोई दिगिन कशिया आर जे जंग जंग आई हेना लुआंग रल वेक में बॉक्सिया दरो जाम ही असे ओ अच्छा लोम दरो चुआन जाम ही ना जबील पत्यान जारा कदम चुआन दोरकल दोरकल ना ही nam anuam kati a hei panni kachu kachui zo le chep to mai bahan tai matak em o i hal tu kang e o jam katan chuan kar tuana fm zo oi rimoi run lama ian ka le ibe li strong pui a chu trom pui a chunga na tho trom pui chunga na tho hi nuam kati ngoi ngoi kati aran tani ni etro ina thodan ka chaw hey na thopa a thil ngai thla kha anwam don lutu ka mo nang chu arem top ni jam ole fm zo 100.7 hian a iko har na te ina tho ti tuinan che in huni lo man apui theina do sa na ka lan che ni o jam chuan si se te hian bo in chu chota messaging bahut listening ni a ka puang mai du ti no am le haran tu vela ni si se te hian ngai lo ka phal lo in message ka belong ha kel chin ni a o to chaliye bahut hi khoobsurat geet ki taraf chalte hain humko sirf tumko sunte hain balkan yagnik aur kumar sanu ki awaaz mein gaaye geet meri taraf se aap sabhi ke naam

वेल दोस्तों, मेरे आप सभी को, तुमको, सिर्फ तुमको अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में गाया गीत आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। यस, तुमको, सिर्फ तुमको हम चाहते हैं और बस आपका ही याद आता है दोस्तों, क्या करें। और यहाँ पर मैं चलना चाहूंगी, वी कुंगते की तरफ से संदेश आया है और कुंगते ह्यान जिलल जामा अंग दी अंग रिंग मिलेर को वेंग दिना फने थे मे छे बुम नुआम दी एम एम अनि खा तेरो पार पारीपू पार पारीपू खा अरोन शिलनि चु कुंगते चुआन ओ अनि दोनमी कुंगते चु त्या एम एम चु जाम चु अलेर दोनमी अलेर दान दे थियांगलि मसिन थियांगलिम ची खमो पोई मोलुतुक। तो चलिए सुनते हैं अगला गीत, प्यार का अंजाम किसने सोचा है। यस, किसी ने सोचा है कि प्यार का अंजाम क्या होगा क्या नहीं होगा, और सोचना भी नहीं चाहिए प्यार, बस प्यार कीजिए दोस्तों, जो होगा देखा जाएगा, है ना दोस्तों। तो चलिए मेरी तरफ से बहुत ही खूबसूरत गीत आप सभी के नाम।

वेल दोस्त, उम्मीद है आप सभी को फिटनेस बॉय की तरफ से जो बहुत ही खूबसूरत सा यस गिव मी सम सनशाइन गीत फरमाइश की थी, आप सभी को सुनकर आप सभी को अच्छा लगा होगा। और मैं ये जाते जाते कहना चाहूँगी कि आप कभी अपना हौसला मत छोड़िए। यस, जो आप जो भी जिंदगी में अपने जीवन में जो कर रहे हैं वो आप करते रहिए, पीछे मत मुड़िए, पीछे मत देखिए। और यस, मैं चाहती हूँ आप हमेशा अपना अपने हौसले को कायम रखिए और बस हमेशा खुश रहिए, ठीक है? जो होगा देखा जाएगा, कल की मत सोचिए दोस्तों। आज के इस लाइफ को, जिंदगी को, प्रेजेंट लाइफ को भरपूर एन्जॉय के साथ जी बिताइए, और स्पेशली हमारे साथ बिताना मत भूलिएगा, ठीक है? क्योंकि FM Zoe 100.7 आपका इंतजार करती है। यस, आप सभी को मिस करती है, ठीक है? तो चलिए, आप सभी से विदा लेने का समय आ चुका है। और मैं क्या कहूँ दोस्तों, मुझे आपसे ना, आप सभी से मिलने का बहुत मन करता है, क्या करें हम मिल भी नहीं सकते हैं ना, लेकिन हमारी ये दूरी ना हमारे रिश्ते को हमेशा कायम रखेगी, है ना दोस्तों? यस, तो फिटनेस बॉय की तरफ से संदेश है, थैंक यू बॉस दमरिंगंग से मिल चबोक्सी फिल बोक्सी एंड पतियांतु ओय बोक्सी ओ नंगपो ओ के वाला ही अंजामा zam aje veli phalna iler phalna iler chuan aje veli chu ngai to avanna don em koi lam to ange ashut ashut be ang ka ngai tom lau ber o in zinga hian और दुर्गे जी की तरफ से संदेश आया है। दुर्गे जी लिखते हैं, गुड मॉर्निंग आरजी, नमस्कार। यस, आपको भी नमस्ते दुर्गे जी, हमें सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चलती हूँ इस आखिरी गीत को लेकर, तुमसे मिलने को दिल करता है। यस, आप सभी से मिलने को दिल करता है, पर लेकिन क्या करें दोस्तों, हम मिल नहीं पाते हैं ना, लेकिन कभी ना कभी, कहीं ना कहीं तो हम आपसे जरूर मुलाकात होगी दोबारा या किसी समय, है ना दोस्तों? तो चलिए मिलते हैं दोबारा हिंदी के अगले खंड पर 11:20 पर, ठीक है दोस्तों? तब तक के लिए आरजे वीर की तरफ से ये आखिरी गीत आप सभी के नाम।

हेलो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हम दोबारा स्वागत करते हैं हिंदी के खंड पे। और आप सभी हमारे साथ सुन रहे हैं आकाशवाणी आइजोल FM FM 100.7। और आपके साथ फिर एक बार जुड़ी है आप सभी की दोस्त आरजे वीएली। और दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ कि आप सभी ने आरजे लोमतेई के साथ उनके साथ FB के हमारे पेज ऑल इंडिया रेडियो आइजोल पर लाइव शो पर आप सभी ने एंजॉय किया है या नहीं। यस तो हमारी आरजे लोमते खूबसूरत है ना दोस्तों तो आपको खूबसूरत आरजे देखकर उनके साथ बातें करते हुए आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो चलिए हमारी आवाज को सुनकर, हिंदी के गीत को सुनकर आपको और भी अच्छा लगेगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है। और आपकी दोस्त आरजे वियली आप सभी के प्यार भरे संदेशों का इंतजार करेगी दोस्तों, ठीक है। यस और तो चलिए फिलहाल मैं इस खंड की शुरुआत करना चाहूंगी बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ। और मैं गीत सुनाना चाहूंगी आप सभी दोस्तों को, जिंदगी कुछ तो बता। यस इस खंड का सबसे पहला गीत मेरी तरफ से आप सभी के लिए, और इस गीत को गाया है जुबिन नौटियाल ने, ठीक है। तो चलिए इंतजार रहेगा आप सभी का, और आप सभी का समय अच्छे से बीत रहा होगा, है ना दोस्तों। यस तो चलिए ये गीत सुनते हैं मेरी तरफ से।

दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को हमारे आज के हिंदी के सबसे पहले खंड का सबसे पहला गीत यस जिंदगी कुछ तो बता जुबिन नौटियाल की आवाज में गाया गीत आप सभी को जरूर पसंद आया होगा, है ना दोस्तों। यस, आपके भेजे गए संदेश का मुझे इंतजार है। और आज क्यों, हमारे दोस्त अमोस शिलोंग बहुत ही खामोश है। जाम अमोस शिलोंग ही अरे त्रो। तो चलिए, आप सभी के इंतजार के लिए मैं अगले गीत की तरफ बढ़ना चाहूंगी। और मैं चाहती हूँ कि आपको मतलब आज का दिन ना आप सभी के लिए अच्छे से बीते, खुशियां और आनंद से। और मैं नहीं चाहती कि आप गुमसुम हो, मायूस हो, उदास हो दोस्तों। यस, तो चलिए सुनते हैं अगला गीत, तुझ में रब दिखता है। बहुत ही खूबसूरत गीत मेरी तरफ से, रूप कुमार राठौर की आवाज में गाया गीत आप सभी के नाम।

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को रूप कुमार राठौर जी की आवाज में गाया गीत रब ने बना दी जोड़ी, यस, आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। जी हाँ दोस्तों, इस गीत के मतलब जिस तरह इस गीत ने कहा है कि रब ने बना दी जोड़ी, उसी तरह दोस्तों हम सब की जोड़ी रब ने बनाई है ना दोस्तों। और हमारा किसके साथ बनाया होगा ये तो हम नहीं जानते, काश हमें मालूम होता है ना दोस्तों लेकिन कोई बात नहीं, हम इंतजार करेंगे हम जिसे चाहते हैं वो कहीं किसी और का हो चुका है, और हम मतलब हम जिसे चाहते हैं वो किसी और का हो जाते हैं और ऑलरेडी हो भी जाते हैं जिसे हम चाहते हैं ऐसा है जिंदगी। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, रब ने हमारे लिए कोई ना कोई साथी जरूर बनाया होगा, है ना दोस्तों। यस, तो चलिए अगले गीत की तरफ बढ़ने से पहले मैं चलना चाहूंगी आपके भेजे के संदेश की तरफ। यहाँ पर संदेश आया है मेरे दोस्त जामा की तरफ से। जामा या ना जब अफेयर लो ए इद्यूतिंगुन थे लाया छून लमा एफ बी हिंदी सेगमेंट बीक बी का लाइव थे लो बुर मई चू श्याम ही अहर तो कन्हो तु ते हन चंग ते ऊ कले रौलू आज बेली एफ बी लमा लाइव क्लियर अचाक ओम तो कई चू इनशेम इनशेम ना चिखत आ गंगाई ना कसई दो तो लौ मयांग फुंचर फुंचर मिंतिपल मिंतिपल अंग सोई दोन स्वान सोई तुर अतम Next song itan le control room a duty zong zong tele duty officer tan po oron tani zama hian zaman ti fel chep tu ranga yang o ma se life lo wa ka om hi chu nuam ka ti zo ke ma hian mo ti hian ka kon fi zo ka o hi in ka o hi min mu lawa in sha thian an nuam ka ti zo ke chu life han life vel ka chuan हे अति रेडियो लौ गई गई कतिया थिया मेम जाम चुआन मेंग मोई ते हियान वान लर इसकमेंट मसा अमी फुबा लाखुन खोवेला लेर बेर मई पो निलविन जई जई जई लोर जई लोर लाख नुला लमा स्पेशलिस्ट बाबारी पुले अछास paruk te tan ron tia ni ming moi te hian ole chan kong te hian a jemon vl ivan nui moi ve amostan em ni inui che ni lau de we kong te ita

안서울러움 그 누이친 짠가 우러 델레 페이스에 짠간 김치앙 엥 짠 두게지 기타브세 산데시 아야 해 두게지 리크테 헨 굿 모닝 아르지 나마스카르 예스 बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गे जी आपके इस तरह संदेश भेजने के लिए और विश करने के लिए हमें तो हम भी चाहते हैं कि इस तरह आपका समय भी हमारे साथ अच्छे से बीते यूं ही तो चलिए मैं मिंग मोइते आका बहुत ही मनपसंदी गीत सुनाना चाहूंगी मेरा दिल भी कितना पागल है कुमार सानू और अलका याग्निक के बहुत ही खूबसूरत आवाज में गाए गीत मेरी तरफ से आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए

Well, दोस्त, उम्मीद है आप सभी को हमारे दोस्त मिंग मोइतिया का बहुत ही मनपसंदी गीत मेरा दिल भी कितना पागल है। दोस्तों, ये प्यार तो तुमसे ही करता है। कुमार सानू और अलका यागनिक के बहुत ही खूबसूरत आवाज में गाया गीत आप सभी को भी जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले गीत की तरफ। और अगला गीत मैं सुनाना चाहूंगी आप सभी दोस्तों को, तन्हाई तन्हाई तन्हाई। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में ही गाया गीत। और उससे पहले कुंते ह्यान कऊ कऊ तिरंग मई जिला जामी मित मई पो इवेंग इवेंग वे इक नंगे मासे जिला जामी ताका इनी तोलाओ हाउ इनी तोलाओ लवा अति ज्यालु तुके रोंतिया नि कुंगते ह्यान आ कति लम पांग पोनि चांग लवा ग उ ग उ गति पोन जामते चान इनके मशे थ्याम बेक थावा मोरिस ह्यान गुड मॉर्निंग आरजे मिस आरजे इप्ले लिसे अमोय छिनते तके पन्ना की तमन्ना है किशोर कुमार ले लता मंगेशकर तिन अनसखा ngai ngai thakeu ilam thanti ila मासे लथन हुन अनिलो दैट्स माय एंपोचुनी से लल रियंग एम एम ए सर वी कुंग ते तान इ प्ले ले तुर जोंग जोंग खा करोन थन करोन लान वे के चवान जो ओ एफ एम गा लतु ति तान पो कलान बो कलान वे बो के अरोन त्यानी ए मॉरिस इ सोई दिख लो ओ कचान कुंग ते हिमो एंगे अरियांग लो ओ Ariang ngai lau FM zo oi om chung le ka om chung zo ariang don lau ma sai min ngai lau sia ngai tu hi anga lu tu ka mo za ma yan na aje bi el tun na ya pei chuan is a em kha zu ba ka nula phan chang to ini kha fb live ti vela zam rual le lai rual po ini to lo i chan ten bo ruak an ngam ha ha nen hian zam to ngai su o khoi muna po zam ngai lo la nu ini kha cha chi ne zam ole chan amo sapo kan soi kan ron kan soi kan soi ya lo chuak lo mai lo चुआन अमोस लिखते हैं कि गुड मॉर्निंग सुप्रभात आवास वाली आरजेवीएल खूबसूरत आवास वाली आरजेवीएल यस आपको भी गुड मॉर्निंग अमोस जी। इतने मतलब आप कहाँ थे इतने समय आप कहाँ थे कार्थर निम सबेरनी नुआम तकिन इमंग चन एम ए चन तेरेंग मैं है एफ एम जो ओया ngat mo kan bul kan jana kan kar tharte anuam top iron duty don lo emo katia io katia io kahan sha chu kamu mang emo kati mai alom segment kalau ngai thareng ania 2 pm ana 2 pm na na a ka kal anga ya mani mani ya om chu e rong bol te angai be a ka buai e ma message kalau thon man lo ani e heng chu ti chu एरोंग बोल सक्तूर खा ngai ta ba ta ngai ni kha tramos sangi ya sangi hian kalau ngai tha tra cha ran ya bel ka no ta kalau lut man lo ani e e le dio kha lo no dro o sangi a le ke po mo ina kom hian bel no le nga yang chi the hi ka man u hei ung de hian mo e no le thi hei nuam ka ti te to pa ni chu mo

वेल दोस्त, उम्मीद है आप सभी को तन्हाई तन्हाई यस आपके याग्निक और उदित नारायण के बहुत ही खूबसूरत आवाज में गाया गीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। दोस्तों, अब हम चलेंगे अगले गीत की तरफ और अगला गीत मैं सुनाना चाहूंगी, बहुत ही खूबसूरत गीत। तो शायर है मैं तेरी शायरी, यस ये गीत तो आप सभी को मालूम ही होगा। नहीं, तू शायर है मैं तेरी शायरी नहीं, मैं नहीं सुनाऊंगी ये गीत, मैं आपको सुनाना चाहूंगी बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। यस, FM जो ओ के जितने भी मतलब दोस्त हैं जो हमें संदेश भेजते हैं ना, उन सभी को हम इतना इतना प्यार करते हैं कि क्या बताएं, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम दोस्तों। यस ये कभी मत भूलना, ठीक है। यस, और ये सुनाने से पहले मैं चलना चाहूंगी यहाँ पर अमोस की तरफ से संदेश है। अमोस ह्या निमिना खचुआन खुआ आहार दुखो मई मिन मांग एम एम तू नू कनै तो लवा नू लनै ते कथिक रूम रूम मई अनी नंग इनु गिफ्ट इपे एम चुआन निसई दि ग्रेंग ए रोंग मिन बोल सकतु दूर जोन अंगाई तो अनि ही मितम तकिन FBIG व्हाट्सएप कलतंगिन कोपुई तुर अनजोंग अनजोंग an mu fo wa ke po fm kal tang hian ka zong ve me don em ni te ka ti tamai a chi don em min lo shil a chi me te sin a mo smil cha de an tam hi tro ma se mel cha ring o thi ni lawa ke chu mo an thin lung hi thiang him se a ngor ka sei tam lo ma yang san an thin lung hi thiang hlim se fel em em mai se chu chu ka do ber ke chu ha to chaliye sun filhal main sunana chahungi aap sabhi ko bahut pyar karte hain tumko sanam aur helen hian ajvl se bay on nang ole nang pole o helen chuan tan hai ti la chu ameng moi te a rong hle mai a ron tia ni to chaliye filhal sunte hain bahut pyar karte hain tumko sanam meri taraf se aap sabhi ke naam।

दोस्तों, मेरी आप सभी को अनुराधा बोलवार की आवाज में गाया गीत बहुत प्यार करते हैं, तुमको सनम, यस, आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। और इस तरह आपको मेरे दिल की बात मालूम हो चुका होगा कि हम आपको कितना प्यार करते हैं। तो आप सभी को आखिरी गीत सुनाने का समय आ चुका है और मैं वापस आऊंगी आप सभी के साथ हिंदी के गीतों को सुनाने के लिए। आज के लिए दोस्तों, वही तुन मंदे ही तो अफान, राइट, मैं ये मो 2:35 में, यस, 2:35 पर आज के हमारे आखिरी खंड के लिए मैं वापस आऊंगी। ठीक है दोस्तों, तो आप इसी तरह हमारा साथ देते रहना, ठीक है। और मैं चलना चाहूंगी इस गीत के साथ, दो दिलों की कहानी, यस, हम दोनों की, मतलब दोनों की मतलब आपकी और मेरी। ये कहानी यूं ही चलती रहे, है ना दोस्तों, यस, कभी ना मिटे, यस। और मैं चाहती हूँ कि जिंदगी में आपके हम सफर के साथ आपकी जिंदगी, आपकी कहानी यूं ही चलती रहे दोस्तों, यस। और आप सभी एक दूसरे के साथ प्यार करते रहे ना, ठीक है, यस। और कभी कभी अर्जय वीली को भी मिस करना, ठीक है, यस। आप सभी के प्यार भरे संदेश के लिए आप सभी को दिल से फिर एक बार शुक्रिया अदा। तो ये आखिरी गीत मेरी तरफ से आप सभी के लिए, और तब तक के लिए दोस्तों मुझे इजाजत दीजिए, ठीक है। और ये गीत मेरी तरफ से आप सभी के नाम, और मैं चाहती हूँ कि आपका दिन यूं ही अच्छे से बीता रहे, ठीक है, खुशी और आनंद से। तो ये गीत आप सभी के नाम।

नमस्ते श्रोताओं, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अब आपको बेहतर सेवा प्रदान करने के हमारे प्रयास में हमारे साथ जुड़े रेज रेडियो ऑडियंस इंटरैक्टिव सर्वेक्षण और मूल्यांकन हमारे विशिष्ट मोबाइल ऐप के साथ मानद संरक्षक बने, जहां आप उद्घोषकों को रेटिंग दे सकते हैं, कार्यक्रमों की समीक्षा कर सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया साझा कर सकते हैं। बस हमारे आधिकारिक फेसबुक पेज पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पंजीकरण करें। आपकी सक्रिय प्रतिक्रिया

हमें आकाशवाणी की विरासत को बेहतर बनाने और बनाए रखने में मदद करेगी। तो सिर्फ सुने नहीं, रेज मोबाइल ऐप के साथ बदलाव का नेतृत्व करें।

हेलो, नमस्ते, गुड आफ्टरनून, शुभ दोपहर आप सभी प्यारे दोस्तों को आरजे वेले की तरफ से। और आप सभी मेरे साथ सुन रहे हैं आकाशवाणी आइजोल एफएम 100.7। और दोस्तों, मैं जानना चाहती हूँ कि आप सभी का दिन कैसे बीत रहा है और कैसे बीता। और वैसे भी आप सभी जानते हैं कि ये जो खंड है ना, आज के लिए हमारे लिए आखिरी खंड है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद तो मैं आप सभी से विदा लूंगी, और क्या पता कब, किस वक्त किस दिन इस तरह फिर से मुलाकात हो एफएम 100.7 पर। तो चलिए, खैर जो भी हो, हमें उम्मीद है कि हम जल्द ही आपसे मिलने वापस आएंगे दोबारा, ठीक है। तो चलिए, मुझे आपके भेजे के संदेश का इंतजार रहेगा, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी का दिन अच्छे से बीता होगा और आप सभी ने हमारे साथ एंजॉय किया होगा, जिन जिन्होंने भी हमें सुना, ठीक है। तो चलिए, आज के इस 2:35 से 3 तक छोटे से पल को हम बहुत ही हसीन बनाते हैं बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ। शाम भी खूब है मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

दोस्त, उम्मीद है आप सभी को शाम भी खूब है। जब आप हमारे साथ होते हैं ना FM जो 100.7 पर, तो हमारी जो शाम है, जो आज के शाम के आखिरी खंड है ना दोस्तों, बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत ही खूब लगते हैं। और हमें उम्मीद है कि आपको भी हमारे साथ अच्छा लग रहा होगा और हमारे गीतों को सुनकर, जो हमारे पेश किए गए गीतों को सुनकर आप सभी को भी अच्छा लग रहा होगा, आपको पसंद आ रहा होगा। शाम भी खूब है महबूब, जब साथ होंगे तो और भी ज्यादा अच्छा लगने लगता है दोस्तों। तो आज के ये जो शाम है आपके लिए बहुत ही खूब हो, बहुत ही अच्छा वाला शाम हो दोस्तों। और मैं आप सभी को अच्छा वाला शाम देकर आप सभी से विदा लेना चाहूंगी। तो चलिए हमारे आगे अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं और सुनते हैं बहुत ही खूबसूरत गीत। उम्मीद है आपको ये गीत जरूर पसंद आएगा, दिल में दर्द सा जगा है, बहुत ही खूबसूरत गीत। और इस गीत के बाद मैं मैं गीत सुनाने से पहले यहाँ पर संदेश आया है कुंगते ह्यान अर्जे मो वी एल नेक्स खा ल चनपुई खोलशिंग जामपुई त्रिपुरा अमिन गुन तका अलोंग थाकतान ओ त्रिपुरा अमिन गुन तका अलोंग थाकतान न रोंदी कुंगते ह्यान ओले कुंगते मिन थन सक बे दोन नंगे इ थन सक जिंग अखन कतल बे लाउ छु अवन न तक एम कदु सकते रेंग नेन से ओ और मैं मोइते ह्यान वानला गुड आफ्टरनून। आपको भी गुड आफ्टरनून। अगला गीत कबूला कबूला ओपियतान अले स्वान अमो सहियान गुड आफ्टरनून। खूबसूरत आवाज वाली आर जे वी एल आपको भी लंच 8 AM इहा तो एम नर्तक तक रोन ब्ले ले अंग से ओ लल जई एं गजई मो Zuan, yes le ka in me a atom te hong be lo mang le ang se o ani lo zuan hum ko tum se pyar hai jiya beqrar hai aaj mere bulbul tera intezar intezar hai kati kati ti mei don che kati kati mei don che इला प्ले ले तो जों जों खाइ फेम जो ओइ गा ले तो जों जों दान ले एसएमएस थियार तो दान रन त्यानी जई पे बुक से ल चन पुई अनि लाओ लल लल छत पुई मो ओ लल छत पुई कोल शिंग तो चलिए ओ कुंगते खान गलौछा स्वाल पल आ लल चन पुई गलौतिया ओ लल छत पुई को शिं जाम पुई त्रिपुरान त्रिपुरा मिन मुन तका लौ ऐखा गतान अरुंती नि चो अले तो चलिए फिलहाल सुनते हैं ये अगला गीत मेरी तरफ से और लल छत पुई को शिं ओ जाम पुई त्रिपुरा इना गुत तका लौ ऐखा गतान ओ

पल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को दिल में दर्द सा जगा है, कांटा सा कहीं लगा है। दोस्तों, मोहब्बत ये नहीं है तो क्या है दोस्तों? यस, जब मोहब्बत होती है ना हमें, तो हमें हमारे दिल को ना मतलब कांटा सा लगने लगता है। जब वो हमसे बातें नहीं करते हैं तो हमारा मन ना, हमारा दिन, हमारा समय कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। जैसे कि आप अगर हमें संदेश नहीं भेजेंगे FM 100.7 पर, तो हमें अच्छा नहीं लगता है दोस्तों, हमें कांटा सा महसूस होता है। यस, तो चलिए अगले गीत की तरफ बढ़ने से पहले यहाँ पर चलते हैं आपके भेजे गए संदेश की तरफ। और कुंगते ह्यान इफेले इप्ले ले तो खा गुरद्वात नु शुन स्वादे नंग मातान ओ ए तो सी जेत ह्यान लल गई तो तकिन ले ओ मलोम सी जेत यस ओ मलोम कशरे बिया वांग वे ना यान वे का जाए मी मैसेज में रोन थोन ही नहीं कर शिया इधर चू रोन थोन चार चार मो कर शे रे डॉन लुटुक और ट्रिपी कोशिंग यान उलुक तक इन कलाऊंगा इतना ए वी कुंग ते तान पो कथन लेट वे हाल ए ओ चुआन कथन लेट वे हाल ए ओ

tan itan po ni se bi kung te at sunga po kalome aron tiani GP kolshin ain safe dan ino karon siar swakani o GP e kolshin zampui swan ming moi te hian e o ming moi te message ka siar to amo sa hian तेरा यार हूँ मैं अरिजीत सिंह अगर ये गीत आपकी प्लेलिस्ट पर है हमें हमारे दोस्त मामूनी और जानते हैं कह रही है ज़रूर बजा दीजिएगा इस में ना ही अनुम छीन हे को बेला हियान वानरम अरुण लफुआल अनिबेर में छीन ऐसा बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार भरे संदेश के लिए तो फिलहाल मैं यही गीत आप सभी को सुनाना चाहूंगी तुमसे मिलने को मन यस तुमसे मिलने को दिल करता है यस कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में गाएंगी मेरी तरफ से आप सभी के लिए

दोस्त, उम्मीद है आप सभी को मेरे पेश किए गए गीत यस तुमसे मिलने को दिल करता है। दोस्तों, आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। यस, आज आपका दिन, आपका समय अच्छे से बीता होगा दोस्तों। यस, और अभी मैं आपको इस खंड के लिए आखिरी गीत सुनाने वाली हूँ दोस्तों, और इसके बाद मैं आप सभी को छोड़ के चली जाऊंगी दोबारा। यस, दोबारा वापस मिलने के लिए दोस्तों। यस, और आप भी जब तक हम नहीं मिलेंगे अपना ख्याल रखेंगे, है ना दोस्तों। यस, और आज जिन्होंने भी हमारा साथ दिया, हमें सुने, यस FM जो 100.7 पर हमारा साथ दिया, हमें संदेश भेजे, उन सभी दोस्तों को मैं दिल से शुक्रिया अदा कहना चाहूँगी दोबारा। और यहाँ पर जाते जाते एक संदेश आया है मेरे दोस्त जामक की तरफ से। जामकियान तुआक तकिन हो अंग से ओ नेक्स्ट सॉन्ग इतान अर्जे वी एल रंती आ ओले जाम कलोम लुटो के ओ नंग पो इन जवाई खान जामा जामा तेनेन खान ओ न थो इन न थो ना चंगा इन लमिन पन

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एफएम जोई पर। आपके साथ जुड़ी है आरजे उमदई। आप हमें सुन सकते हैं रेस मोबाइल ऐप पर और या फिर 100.7 पर। इस भाग में हम आपको सुनाने वाले हिंदी फिल्मों के गाने जो कि बहुत ही खूबसूरत होने वाले हैं। आप सब कैसे हैं, हमें मैसेजेस द्वारा जरूर बताइएगा। और आपके बताने से पहले मैं आपको सुनाने वाली हूँ ये खूबसूरत गाना, एक तड़कता भड़कता गाना जो कि दिलजीत दोसांझ, सिया और ग्रेग क्रिस्टिन की आवाजों में हम सुनने वाले हैं। और ये इनका इंटरनेशनल कोलैब है दोस्तों, हस हस। इसी से हम शुरुआत करेंगे और आई होप कि आपको जरूर पसंद आएगा। दिलजीत दोसांझ, सिया और ग्रेग क्रिस्टिन की आवाजों में हस हस।

हंस हंस दिलजीत दोसांझ, ग्रेग क्रिस्टिन और सिया के आवाजों में। दोस्तों, एक ही गाना हम आपको सुना पाए हैं, लेकिन आपके मैसेजेस की बौछार आ गई है। गुरी साहिलो का मैसेज है, इन्होंने लिखा है, आज हमते इहो इओ हि चुका है लो खूब बे अच्छा कतियांग लक दुर्खा मिंग दिलाओ दे मिरन कौछिन हिचन कन ओन सच्यांग लौती ना नेता सच्यांग आ कलो ओ इजाइती ले तुरखा रमतुई रियल नजरेथ हॉस्पिटल मी लवाई थाकता नरो दिनी रमतुई रियल कलोदम थ्वाई थ्वाई से कंती आ ओ मुरी साइलो हियान अरोन थन सकनी विकुंग ते आर जे पी ओम ते निमिन मदर्स डे खा एंगे इदोन वेले अतिया मंगाइना तमतोक कदोंग अनि निमिन खचवान मो मिंग मोते हना छोम ते नमस्ते ड्यूटी नोमले रोंती आपको भी नमस्ते हुन मन नोमले ओ नंग पो तीनों को समर्पित करते हुए अगला गाना में जो कि अजब प्रेम की गजब कहानी से आतिफ असलम की आवाज में हम सुनने वाले हैं तू जाने ना मिंग मोते अभी कुंते ओ अंगूरी साइलो को डेडिकेट करते हुए

तू जाने ना, ये था आसिफ असलम की आवाज में। अगले गाने की ओर बढ़ेंगे। अगला गाना भी बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन उससे पहले ये मुझे भेजा है गुड बॉय ने। गुड बॉय ने लिखा है आरजे वीएल निलवीन आरजे उमते इन इन लशे वेल तुक निचे ना कसय वां खान मो वेल इचु हो दे तो तक तेरंती मिशा मिशा नंग बन ओ गुरी साइला वां चिया खान को इशा शांग अवा इन वी कुंगते मेंग मोयते अंगुरी साइलो नंग ले ड्यूटी पुइते तान ओ रंती निवन फेल छिन तक एम गुड बॉय मिंग हि पुजावनिया पार पारी पुइ हनार जोंते कलो लुत वे मन छे ए फेल कन लो वेलकम छे ओ इजाइति ले तुरखा तलांगवाल मेंग मोयते अंगुरी साइलो ngakte pa bil kho thlir vi kung te te longai thakatan aron didi an ngai thla thupang o chuanin nal to kha karon than don chewa in zawai tan in zawai longai thakatan a ka than du chu le kan di o tlangval man to mm sarvira tan khan karon than sak bokani o aankhe bhari bhari aur tum muskurane ki baat karte ho

आंखें भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो, ये था जुर्म मूवी से और आवाज हमने सुनी कुमार सानू की। अगले गाने की ओर बढ़ेंगे और हम सुनेंगे एक काश के हम कभी हाँ कभी ना मूवी का एक और खूबसूरत गाना। लेकिन उससे पहले मिंग मोइते ने लिखा है आज योम ते पर पारी पुल है अछास पर उकता ले ओ ले गाओ हम छेटे आज सो पर खति जात का चुला नहीं बिक लाओ। और ये हमें मिला है दुर्गेश नागनपुरे, इन्होंने लिखा है दुर्गेश नागनपुरे और उनके जो फैमिली है वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। और इन्होंने लिखा है कि आंखें भरी भरी जो गाना है वो प्ले करने के लिए वो हमें धन्यवाद कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नागेश नागनपुरे जी, आप इसी तरह हमारे साथ बने रहेगा और भी खूबसूरत गाना हम आपको सुनाएंगे। आगे बढ़ते हुए हम सुनेंगे दो गाने ही हम सुन पाएंगे क्योंकि 10 मिनट है। और पहला गाना जो मैं आपको सुनाऊंगी वो है कभी हाँ कभी ना से, जो कि शाहरुख खान पर फिल्माया गया था ऐ काश के हम।

काश कि हम होश में अब आने ना पाए। कभी हाँ कभी ना का एक खूबसूरत गाना आप सभी के लिए हमने प्ले किया और मुझे आशा है कि आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। हम और आप जुड़े हैं एफएम जॉय पर और आपके साथ जुड़ी है आज एवं तय 8 मिनट और है, दो गाने हम सुनेंगे और दूसरा गाना जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ मर्लिन डिसूजा की आवाज में हम सुनेंगे एक अजनबी हसीना से।

एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई और आवाज हमने सुनी मर्लिन डिसोजा की। बहुत ही मनमोहक और खूबसूरत आवाज है इनकी, आगे भी हम सुनते रहेंगे। आखिरी गाना इस भाग के लिए हम सुनेंगे, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई मूवी का एक खूबसूरत गाना, अजय देवगन और कंगना रनौत पर फिल्माया गया था। जाते जाते हम ये गाना सुनेंगे। अगला भाग जो है हम आपके साथ जुड़ने वाले हैं 7:30 बजे, ठीक इसके बाद आरजे सोमा आपके लिए लेकर आने वाले हैं मिजो डिवोशनल सॉन्ग्स। जुड़े रहेगा FM जॉय के साथ।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एफएम जॉय पर। आपके साथ जुड़ी है आरजे ओमते। समय हो रहा है हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:30 बजे और यह सिलसिला जारी रहेगा 8 बजे तक। और इन मिनटों में, यानी कि 30 मिनटों में, हम चाहेंगे कि हम आपका खूब मनोरंजन करें हिंदी फिल्मों के गानों द्वारा। और सबसे पहला गाना जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो होगा मैं रहूं या ना रहूं। मेरे फेवरेट गानों में से एक है दोस्तों, इमरान हाशमी और ईशा गुप्ता पर फिल्माया गया था। और इसमें हम सुनने वाले हैं आवाज जो है, हम अमाल मलिक की सुनेंगे। आइए सुनते हैं सबसे पहला गाना मैं रहूं या ना रहूं।

हजार बार सोचा कह दूं कि फ्रेंड नहीं मेरी गर्लफ्रेंड है तू, पर सपने टूट जाने का डर कभी दिल से गया ही नहीं।

ये था अमाल मलिक की आवाज में, आवाज ही नहीं बहुत ही खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली आवाज में हमने सुना मैं रहूं या ना रहूं। आगे बढ़ते हुए हम सुनेंगे कबीर सिंह का एक खूबसूरत गाना तुझे कितना चाहने लगे हम।

तुझे कितना चाहने लगे हम कबीर सिंह की आवाज में। गोरी सालों का मैसेज है। आज हम तेरा रुआपो अबांग तदे हुए कलाऊंगाई थमेक से ओ नेक्स्ट खा के जेल जामा हमें मोई ते आपू एल वी अदे नुपा मा थंगी ते पार पारीपू तेलमी अलविन और अंति पार पारीपू ने निहा निमले इंदो एलोआ पर एंग हयाना जे इमिंग का थैंक यू तलात में आजे ओम ते ओ आजे ओम ते तिचुआ निथिल रोन दाही कछियार कछियार सोल में थे ओ इंशा थे आमा आजे नंग ही थिल ती पुई चे इला इंगे नी जुंग जुंग ची इनी मेल तिफा जुंग जुंग ची न्यांग कनी ओ कनी आगे बढ़ते हुए हम सुनने वाले हैं एक और खूबसूरत गाना जो कि होगा इस बार हम सुनेंगे सोनू के टीटू की स्वीटी मूवी का एक खूबसूरत गाना सभी दोस्तों के नाम तेरा यार हूं मैं।

हम और आप जुड़े हैं एफएम जॉय पर, आपके साथ जुड़ी है आरजे उमदे। अगले गाने की ओर बढ़ेंगे और हम सुनेंगे एक और खूबसूरत गाना समझावा अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल के आवाजों में। लेकिन उससे पहले मैं मैसेज पढ़ूंगी। पर पारिपू आरजे उमदे कलवाई खरेंगे इजाइती ले तुरखा तंगवाल ए में मई में मोइते या हेलन बुक पुई गुरी साइलो ते लंगवाई खाकता नरोंदिनी वन फेल छिन तक एम ओ तिचुआन इन पेंग हियान आरजे उमदे करिंग सुवाल वक लो मो अछा ए तिदे उजुंग जुंग चीचु नथो पुई इचा खम कति अन अन तिचो कदिया ए सैथे जर्जर मोल टॉप chuan zani nei segment te tlong taka zo fel thei tur che indu sakna kan lan pho dang che or ti ni pa eng han pa eng kalom lut tuk ke o oh. in sa vai tan khan la gron tan sak don che wa agla gana aap sabhi ke liye Arijit Singh aur Shreya Ghoshal ki awazon mein samjhawa

दोस्तों, अब हम सुनने वाले हैं इस भाग का आखिरी गाना, जो कि होगा हैरी मेटसेजल से, जो कि स्टूडियो से मैं बहुत बार आपको सुना चुकी हूँ। शाहरुख खान पर फिल्म आ गया था और हम सुनने वाले हैं बोल जो है हवाएं। इसी के साथ मैं आरजे ओमते आपसे इजाजत चाहूंगी, वापस मैं आपसे जुड़ूंगी 8:30 बजे। जी हाँ, 8:30 बजे आरजे चॉइस के साथ। और दोस्तों, कहीं मत जाएगा, क्योंकि ठीक इसके बाद आरजे, माफ कीजिए दोस्तों, जी हाँ, ठीक इसके बाद हम आपको सीधा ले चलेंगे स्थानीय समाचार की ओर, और आरजे स्पार्कल आपके लिए लेकर आने वाली है वेस्टर्न म्यूजिक डिवोशनल। जुड़े रहिएगा FM ज़ोए के साथ।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एफएम जोई पर। आपके साथ जुड़ी है आरजे उम्दे। दोस्तों, समय बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, 8:30 बज रहे हैं और हिंदी गानों को सुनने और सुनाने का सिलसिला जारी रहेगा 8:30 बजे से 9 बजे तक। और ये हमारा आखिरी भाग नहीं है, आखिरी भाग हम सुनने वाले हैं 10 बजे। और इस भाग में भी मैं आपको सुनाने वाली हूँ मेरे मन पसंदीदा हिंदी फिल्मों के गाने। और बिना वक्त जाए किए हम आपको सुनाने वाले हैं सबसे पहला गाना, जो कि है ये हम सुनेंगे सचेत और परंपरा टंडन की आवाजों में, दोपत्ती मूवी से रांझना।

राजना दो पत्ती मूवी से साचेत पर और परंपरा टंडन की आवाजों में। दोस्तों आपके मैसेजेस हम तक नहीं पहुंच रहे हैं, आप ये मत सोचिएगा कि हम उन्हें नहीं पढ़ रहे हैं, शायद तकनीकी खराबी हो सकती है और मौसम भी अच्छा कुछ अच्छा नहीं है, ये भी कारण हो सकता है, लेकिन आप ट्राई जरूर करते रहिएगा। अगला गाना जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो है कौन तुझे यू प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी का एक और खूबसूरत गाना पलक मुछल की आवाज में।

कौन तुझे यू प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। ये था पलक मुच्छल के खूबसूरत आवाज में। अगला गाना जो, क्योंकि मैसेजेस पढ़ने को नहीं है तो दोस्तों एक के बाद एक गाने मैं आपको सुनाते रहूंगी। आगे बढ़ते हुए सुनते हैं डंकी मूवी से ओ माही, जो कि शाहरुख खान और तापसी पन्नू पर फिल्माया गया था।

हम राब जुड़े हैं फिल्म से ओपर आपके साथ जुड़ी है आज हम दे, जैसे कि हमने आपको बताया आप हमें सुन सकते हैं 107.7 पर या फिर रेस मोबाइल ऐप पर। आगे बढ़ते हुए हम सुनेंगे एक और खूबसूरत गाना, क्योंकि मैसेजेस हम तक नहीं पहुंच रहे हैं। मुसु मुसु हासी देव मल्लाई लाई प्यार में कभी कभी मूवी का एक खूबसूरत गाना शान की आवाज में।

दोस्तों ये था खामोशिया और मुसुमुसु हासी, दोनों गाने दोनों मेरे एक साथ मैंने आपको सुनाए। वक्त हो चला है आपको इस भाग का आखिरी गाना सुनाने का, लेकिन उससे पहले गर्ल जनरेशन का एक लौता मैसेज, एक लौता और मैसेज रोनथोन ओम छुन रोनथिंग ओम छुन ननी मो कछियार लो थे लो गर्ल जनरेशन है राज है एस एम एस लो थोन लो छे महिला इप्ले न लम लो तो आई थर चर रोन तीन मन आई थर थ्लाक छी नेम मेरा तो इन मैसेज छा तुरन ओम हियान खुआते अति हर लो वे आ। जाते जाते हम सुनेंगे मेरी आशिकी की तुम ही हो मूवी का ये टाइटल ट्रैक अरिजीत सिंह की आवाज में। और ठीक इसके बाद आरजेएमएस आपके लिए लेकर आने वाले हैं मिजो लव सॉन्ग्स, कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहेगा एफएम जॉय के साथ।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एफएम जॉय पर। आपके साथ जुड़ी है आरजे ओमते। रात के 10 बज रहे हैं और ये हमारा आखिरी सेगमेंट है, यानी कि आखिरी भाग है, और ये सिलसिला जारी रहेगा 10:30 बजे तक। और इस भाग में मैं आपके मन पसंदीदा फिल्मों के गाने और एल्बम आपको सुनाने वाली हूँ। और सबसे पहला गाना जो मैं आपको सुनाऊंगी वो है फाल्गुनी पाठक की आवाज में, मैंने पायल है छनकाई हे लाही सांगमा पोना मिनलवाई थमेक तू तांडेव लियाउ खान कंथन सकेंगे। ओ, फाल्गुनी पाठक की आवाज में हम सुनेंगे मैंने पायल है छनकाई।

दोस्तों, ये था फाल्गुनी पाठक की आवाज में, मैंने पायल है छनकाई। आई होप आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। हम मैसेज पढ़ेंगे। लदिन पुया फल कोन वेंगलाई आरजे प्ले ले तुरखा नंगमा तान ने लंगाई थवे जोंग जोंग तान अरोन दिनी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मोइते ने लिखा यार जी ओमते इतान लेंगाई थतु जोंग जोंग तान अरोन दिन बोगनी इनवान फेल छीन तक एम। अगला गाना जो मैं प्ले करने वाली हूँ वो है तर्जिन मूवी का बहुत ही खूबसूरत गाना। मेरे पास आओगे मेरे साथ नाचोगे, और ये मैं डेडिकेट करूंगी लदिन पुया मैं मोइते या, और स्पेशली पार्टी ते नुफा जा तान ओ पार्टी एनडीएल ले रूबेन तान खान करोन थन सकनी। मेरे पास आओगे मेरे साथ नाचोगे।

मेरे पास आओगे मेरे पास नाचोगे, ये था दोस्तों टार्जन मूवी से, जिस पर किमी खाटकर को फिल्माया गया था। अगले गाने के पढ़ने से पहले मैसेज हम पढ़ेंगे, ओमेगा सांगते मैसेज कंस्यार लेंगे। ओ तुना आरजे ड्यूटी की चो ओ सही थुई लाऊ मैं यांग टिवेजिया इस सही थुई हूँ निकला उचांग ओ इप्ले टूरते इतान्या लिया वारंटी ने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आपके लिए ये अगला गाना मैं प्ले करने वाली हूँ अरिजीत सिंह की आवाज में, जान निसार हम सुनेंगे, लेकिन उससे पहले अग्नि का ये खूबसूरत गाना है कारवा।

दोस्तों, ये था अग्नि एल्बम का गाया कारवा। इनके बहुत ही गाने सुपरहिट हुए, उनमें से एक गाना बहुत ही लोकप्रिय रहा, वो स्प्लिट्सविला का थीम सॉन्ग भी है, आ हटे। लेकिन इस वक्त मेरे प्लेलिस्ट में वो नहीं है। मुझे वो गाना जो है बेहद ही पसंद है। अगली बार ड्यूटी होगी तो मैं जरूर वो लेकर आऊंगी और आपको जरूर सुनाऊंगी। अगला गाना आप सभी के लिए जान निसार अरिजीत सिंह की आवाज में।

दोस्तों, ये था क्या सूरत है बॉम्बे वाइकिंग्स का गाना, और आवाज हमने सुनी नीरज श्रीधर की। आखिरी गाना जो है इस भाग का हम सुनेंगे, तेरे दिल का मेरे दिल से रिश्ता पुराना है, और सोनू निगम की आवाज में हम सुनने वाले हैं। और इसी के साथ मैं आज ओम तो आपसे इजाजत चाहूंगी, वापस हम मिलेंगे बहुत जल्द। तब तक खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और जुड़े रहिएगा FM जोए के साथ। आप सभी को आज ओम की तरफ से गुड नाइट।